काहे रे मचत वह उदम जा हर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंत उपाय ता कारज का आगे कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया।

सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनो कृपा कर है तन नाम रतन पाया गुरमुखलादा मन मुख पवाया तुस आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बंदूजा कोई नाहे जिए जंत सब तेरा खेल विजोग मिल छुड़िया संजोगी मेल।

चौपाई अमरी करो हाथ रचा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दोस्त सब तुम काब हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो। सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आठ संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है। आप हाथ है मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए। जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्त जुजू करियो हो रच्छा।

नमस्कार तेसी को हमारी सकल प्रजा जन आपस वारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बध कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संत।

सब हूँ। जेते बदनर श्रेष्ठ सब तारा, आपा आपनी बूझ उजारा। तुम सभी ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम।

कहूँ फूल राजा होय बैठा, कहो सिमट पयो शंकर एक ऐठा। सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब्रच्छा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। तुस जिते उठपत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणगाता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तो है मरे। पुरख जपन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सपटारे।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता। किलबिख सकल देह को हरता, दोस्त दोखियन को छय करता। श्री अस्त

स्नै गोंगजो या हे सुरसना पावै स्नै मूर्छित लाय चतुरता आवै दुख दर्द पौ निकनत नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संपत सत्र है सहस पुणिजै अर्ध सहस उन्तीन कहिजै पादरुसुदी अष्टमी रववारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री

मैं नाग्नस्थ है प्रथम मनाओ के सन बिसन कब हो नह त्याओ कान सुनय पहचाना तन सो देव लागी मोरी पग इन सो।

0: वाहेगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साहब संगत जीओ, आप जी रहरा साहब जी का जाप श्रवण कर रहे सब, बेटी जसलीन को पासो। सो महाराज की बड़ी कृपा है, हर वै ऐतवार रहरा साहब जी जाप की सेवा करते हैं। सतगुरु जी ने इदा ही कृपा बनाई रखन। आओ जी हुण आरती आरती के कीर्तन नाल जुड़ना कड़ी है जी।

युक्त सुतान्य प्रभु सुंदर गहमान प्रभु के सिमरन हुए सो फल प्रभु के सिमरन सो फल फल श्री सिमरह जनाव सिमराय नानक करा गोपाय प्रभु के सम शब्द ऊचा प्रभु के सिमरन उद्रम ऊचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझाय प्रभु के सम सब केश सोजाय प्रभु के सिमरन अहिगम त्रास प्रभु के सिमरन पूर्ण आस प्रभु के सिमरन मन की मर जाय अमृत नाम अमृत मह समाय प्रभु जी बस है साध कृष्ण नानक जन कथा संदसना प्रभु सम्रह शिव धानवंत प्रभु सम्रह शिव पातवंत प्रभु सम्रह शिव जन प्रवान प्रभु सम्रह शिव प्रख प्रदान प्रभु का सम्रह शिव भी महता जी प्रभु सम्रह शिव सर्वगिरा जी प्रभु सम्रह शिव सुखवासी प्रभु सम्रह सदा वनासी स्मरंति राग जनावदयाला नानक जन का मंगल वाला प्रभु को सिमरह से परोपकारी प्रभु सिमरह तन सदवरहारी प्रभु को सिमरह से मुख सोहावी प्रभु को सिमरह तन सुख बिहावे प्रभु को सिमरह तन आत्म जीता प्रभु को सिमरह तन धर्म जीता प्रभु को सिमरह तन आनंद निर प्रभु को सिमरह बस हर निर संत कृपा ते आनंद जाग नानक सिमरन पूरा पाग प्रभु को सिमरन कार्य पूरे प्रभु को सिमरन कब होना चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सम सहज समान प्रभु के सिमरन निहितरासन प्रभु के सिमरन कमर विगासन प्रभु के सिमरन अनहत जनकार सुख प्रभु सिमरन कांता पार सिमरह सिय जान जिनको प्रमाया नानक तिन जन सरणी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाय हर सिमरन बीत उपाय हर सिमरन पय सिद्ध जति दात हर सिमरन नीच चह कुंठ जाति हर सिमरन तार सब तरण सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की ओ सकत अवकार हर सिमरन महा अंतरंकार

नाम जब तो पर न भंग। हर का नाम जन की बड़ी आई, हर का नाम जन सुबह पाई, हर का नाम जन का भोग जोग, हर नाम जब तो कछ नाह वियोग। जान राता हर नाम किसी वाय, नानक पूजा हर हर

करण करवन हार स्वाम सब कटा के अंतर जा में अपनी गात में तो जानो आप ही आप संगा प्रवराति तुम रि उस्तत तुम देह नान को न जान को सर्व धर्म श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जब धर्म कर्म सकल क्रिया में गौतम क्रिया सा संग धर्म तो मार क्रिया सकल उत्तम में उत्तम पर हर को नाम जप हर जी सदा सकल बानी में अमृत बानी हर को जा संरसन भुखानी सगर थान देव हो तुम थान नानक जिह काट बस हर नाम सलोक निर्गुनी आर गया सबर सदा समार जिन किया तिन चीत रख जिन किया तिस चीत रख नानक निवहि नारष्टपदि पर मैया के कुंचित प्राण कनु मुदि कं दृष्टान जिन तू साज सवार सी गारिया गर्व कर्म जन उबारिया बार विवास था तुझ प्यारा दुग्ध पर जो बना भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साक्षा अनुमुखा पिया बैठ कर दैन हंगर गुण गुण कृष्ण पुग जाय बक्ष रे हो तो नानक पी जाय जह प्रसाद दारु पर सुख बस सुख प्रात मीत बंता संहस जह प्रसाद पी वह सीतर जरा सुरदय पावन पाप कमला जय प्रसाद भोग सब रस सगर समग्री संग साथ बस दीने हस्त पाप करन नियतर रसन

पापन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पहरदास जीव बिन सब तेरी रास, तुम वैद पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा महसूस के निर कोई न जाना तुमरा, तू जे तुझा भगवंत सागर समागरी तुम रह, सूतर धार तुम ते स्वागत कर, तुमरी गात मेत तुम ही जाने, नानक दास सदा कुरबानी सरोक दीन हर प्रा छूट कर लागहन सोए।

ब्रह्म बैठा सर्व सुखता मन उठा जिस जान अपना हुक्म मनाया सर्व दुख नान तिन पाया गणत साहु अपनी तेरा सुखात पीत भरत आनंद विलास अपनी अमान काश बाहर साहु जी अज्ञान मन रूस करी।

मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानका कुलई लाई मिथ्या तन तन कुटाम सुबाया मिथ्या होम ममता माया मिथ्या राज जोवन तन बार मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्तिया सब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीठ हस्ता मिथ्या द्रोह मुख अभिमान मिथ्या पशुपुर कर कुमार अस्थिर भगत साधु की शरण नानक जाप जाप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण

कर प्रसाद गुरु दिवाष्पति जी प्रसाद शक्ति अमृत काहि तो ठाकुर को रख मन वाहि जी प्रसाद सुगंध तो तांडा वह तो सिमरत परम गत पाव जो प्रसाद बस सुख मंदर सहित आयु सदा मनंदर जो प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पहर सिमरत सरसना जय प्रसाद रंग रह भोग नान सदा ते आई है ते अवन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटा वह ते सह त्याग तोड़ लुभा वह जय प्रसाद सुख सीज सोई जय मनाठ करता कजह गावी जय जय प्रसाद

प्रीत कर जावह। उन्हें प्रसाद आरोप कंचन देहि लेवलावह। दूसरा मसने जो प्रसाद रघुला रह तो मन सुख पावह। हर हर दह कह जो प्रसाद दर सब छिद्र ठाक मन शरण पारु ठाकुर प्रवताक। जय प्रसाद तो जो पूव नाम पाहु चय मन सा सा सिमरो प्रभु। जय जय प्रसाद पाई गुरलाभ दे नानक तक भगत प्रिय। जय प्रसाद आप उखन पहरि जय मन ते सिमरत कुमार श्री जय। जय प्रसाद सब हस्त सवार मान दे प्रभु काउ कबु न बिसार। जय प्रसाद बाग मिलख तना राख पुरु प्रभु अपने माना। जन तेरी मान बन तो बनाई उठ बैठ तो सद तुसह त्याई तुसह त्याई जो काल खाई हाउ हनन तेरी रखा।

सुप्रसन्न बसम सुप्रवदयति मधुतम सर्वन धन प्रवति मया बहु कशुन कनुरया जित जित लैब हित लग हर नाथ नानक का कशुन हाथ सलोक गाध पर ब्रह्म सोए जो जो कह समुक्ता हुए स्वनवीता नानक बिनवंता साधु जनक अजरज कथा पति साधक संग उजल होत सत्संग सकदि होत साधक हम

साधु के संग नहीं काज कारु दर्शन पीड़ित होत न हारु साधु के संग रूह धर साधु के संग नगर पर है साधु के संग इहाउ है सो हिरा साधु संग विसरत हर मिला।

भगवंत भगत कर अंग सकल त्याग दोष का सम्मान ते बिन सा सकला परम कर पूजा सकल पार वा सा संग पाप मन कुए दस भगवत कुमार दूत मुवा भगवंत की टहर कर नित नित मान तन अर पाप सन प्रियत

विकाटी तैसा मानता सब मानता सरंग तैसा राजा जो वरता है साई जुगत नैन कुछ पर कही है जीवन मुक्त पार गुण के सकते ठाव जेत जेत कार राख है तैसा तन नाम अभिकन कराऊं जो प्रभाव है सुन होगा।

सुजता विस्काओ सुख नाहि कोई। जय विह जाना मैं किस करता तब लाग कर जन में फरता जब तार को बैर मीत तब लाग निह चलना ही पीत जब लाग मगन संग वाय तब लाग तरम रहती सजाई।

बिना संतोख नह कुबरा जाय सपन मनोरथ प्रत सब का जन अवरंग सर्व सुख बड़ भाग्य सब प्राप्त हो कन करावन आप आप सदा सदा नान कर जाप कन करावन कर हार का हाथ कहा विचार जैसे दृष्ट कर तैसा हुआ प्याप प्रभ सो जो किस किनो सौ अपना रंग सब दूर सब होगा संग जाय दिखा करब भी का पही का पहनी कर मरा न बिन सया बन जाय नंक साध ही रहे असमाया पप दिवसा समझा पप रचा सबका साधा किनो अपनी विस्तार सब का शोष का हो करने आर

सुन श्रवण भगयाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रिय सलोक। संत सन जो जन पर सो जन उदरन हारु। संत गिरिंदा नानक बहरु बहरे अवतार अष्टपदी। संत का दुख नार जगट है। संत का दुख न जंत नहीं छुटा। संत का दुख न सुख सब जाय। संत का दुख न नरक मह पाय। संत का दुख न मैं तो मिली। संत का दुख सुबह दिहीन। संत के हति काव रखे न कोय। संत का दुख थान प्रगट हुए। संत कृपा कृपा जी कर नानक। संत संग नंद कपी उतारा। संत के दुख ते मुख पावे।

संत का दुखी सदा पिवत, संत का दुखी सदा का नहीं मिलत, संत के दुखी का डान लागे, संत के दुखी का सब त्याग, संत का दुखी महाअहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जानमा मर, संत के दुख न सोते टारे, संत के दुखी का नाश ठाय, नानक संत भगत लय मलाय, संत का दुखी आदि बीज ते टूटे, संत का दुखी का काज न पाय हुचै, संत का दुखी का उदयन परमाई, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर तीर्थ होता है, जिन सास पर अमृत की रोत है, संत के दुखी की जड़ की सुना है, अपन बीजा पे ही का ही, संत के दुखी का आवरण न रख नारायण, संत भगत लय ओ बाहर, संत का दुखी यो बेल लाई, जो जल भी मन बचरी तड़ फटाई, संत का दुख भूखा नहीं राजा, जो पाप की दन है त्राप, संत का दुखी छुटया केला, जो बुआड़ देल खेत माह दुहेला, संत का दुखी तन ते रह तो, संत का दुख साधु में थया कह तो, कीर्तन दखवा तुर ही पाया, नानक जो दह पावे सुई थिया, संत का दुखी बिगड़ दुख पोए जाए, संत का दुखी का दरगाह मिला सजाई, संत का दुखी सदा सहकाई, संत का दुखी ना मरा ना जीवाई, संत का दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चला नरासा, संत का

जैसा सा अविनाशी ना ही कांड तारण तारे ब्रह्मांड कपी व पुरुष प्रताप अनुजा जीवन प्रभु जाता सुशोभावंत सर्व संसार उतरा धनवंत प्रभु सेवक सक्रिय धारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आप मील लय कृपा लय गुरु का सब जा पाए हर की सेवा सोई लाग जिसनु कृपा करम बट पागे नाम जपत पाव विश्राम नानक तिन पुरख कहु तुम कर मारि जो किछु करै सो प्रभु करम सदा सदा बस हर संसार जो सुभाइ हुआ सो हि करणे आरु पुछाण सोइ प्रभु का किया जन्म विष लगान जैसा सत दृष्टा न जह ते उपजे ते हमारे समाय हुए सुख न दान उन्हु बनाय आप सको आप दिनो मान नानक प्रभु जन एको जन श्लोक सर्व कला पार पूर प्राप्त अर्थ जन नार जाके समरन उदरिया नानक देह बल हार अष्टपदी टूटी गाड़न हर गोपाल सर्व जी आप प्रत पाल सकल की चिंता जह मन वाहि देह व्यर्थ को नाहि रे मन बिर सदा हर जाप अपना सि प्रभु आप आप अपन किया कछु न होई जे सब प्राण लोचा कुए ते सबे न नाहि तेरा

जाकी लीला की मियत नाह सकल दिवारे अवगाह पिता का जन्म की जाना पूत सकल पुर अपना सूत समात ज्ञान ध्यान जिन दिए जन दाह नाम त्या वह से यहु गुण मह जाक ब्रह्माई जन्म मर फिर अव जाय उदनी जत व्यवस्थान जैसा जनावत सनान जा नन रूप नन जग रंग नन पी कर रंग

स्थान चौथे पाद में सोजन गत पाय रूप सात जाक सात स्थान पुरुष सात गुर प्रदान कर दू सात सात जाक बाण सात पुरुष महस्त मान सात कर्म जाक रचना सात मूल सात सात उत्पाद सात कारण निर्मल निर्मल जैसे बुझाए दशा सा परि सात नाम पाप का सुखदाय विश्वास सात नानक गुरुदेव पाय सात भजन सात उपदेश सात देव जान जाकर दा प्रवेश सात नृत पूजा जे को नाम जपत ताकि गात हो जाओ सात किया सब सात आप जाने अपने व्यत गात जिसके श्रेष्ठ हो सो कारण हार न बुझ कर विचार करते कि इतना जाने किया नानक जो पाव सुवरतिया विस्मन विस्म पै विस्माद जिन पूजा है स्वाद प्राप्त करंग राज जान रही गुरु का भजन पदार्थ रही वे दाती तो काटना जा का संतरा संसार जन का सेव सोड़ पाएगी।

साधु नानक भूसी पे साष्टपति चरण साधु सत प्रसन्न हर पूजा साधु सत शिवदार दर्शन साधु सत विघन हर नवाम साधु सत्यावन हर अव साधु सत सतारी अप गुण अप गुणकार सब साधु सत प्रभक्त सर्व साधु सत जय सन तब जन हर को सब सब नानक साधु सत प्रभ सोई

सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक है मन प्रदीत, ठाकुर के सेवक निर्मल वीत, ठाकुर का सेवक जान संग, प्रभु का सेवक नाम करंग, सेवक अपरा पालन हर सेवक निराख निरंकार। सो सेवक जह दया प्रभु धार, नानक सो सेवक सास सुमार, अपने जन का परता ठाक, अपने सेवक सर पर राख, अपने दास देव उठाई, अपने सेवक नाम जपाई, अपने सेवक या पात राख, ताकि गात में दुख न राख, प्रभु सेवक को ना पाहु, जय प्रभु से पूजते ऊँचे, जो प्रभु अपने सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दह प्रगटाया।

जाय प्रभवन स्वरहि समाय जुहुवा हुवत सो जाना प्रभवन का कुछान दस्ति महम कान बखाना दस्ता गुन कही कना जाना आठ पहरु प्रभव सह जूरे कहना नुसे जन पूरे

निराहार निर्वैर सुखदाई दागीमद कनैन पायन भगत बंधन दियत करह कन कमल हरदा सिमर सदगुण हरि सदगुर अपने नैन गज प्रसाद स प्रभु जपने इहु हर रस पावे जन कोई अमृत पीवे अमर सो होय सुमरह का नाहि।

परम बोध दुहत है दिन स्वी अंधकार दीपक प्रकाश नानक परम मोह दुख तह ती नासी तपत माय ठाण वरत अन पै दुख नाठि पाए गन बन के मिटे आदि से साधु के पूर्ण उपदेश से पाव चूका निरपा हुई बस सकल व्याद मानती खै न से जिसका साथ कृपा धार सा संग जप नाम मुरारी हित पाई चुके प्रम गमन सुन नानक हर हर जस तरावन निर्गुना सरगुण पियोहि करा तार जिन सकले मोही अपने चरित प्रभाव बनाए अपनी कीमता पाई हर बिना दूजा नाहीं कोई सर्व निरंतरी को सोए।

कुर्वान् मान प्रभु तम हर कनायुदेह दृष्टावता बैठायुता कौ विघ्न न लाघक विजाग्रता बस हर सुविकलता दुष्ठ हर नाम सिमर सिमर सदा सुख।

निर्मल मात्रई जान को प्राव हुई उदयार सेवक जुन सदा निहार बंधन काट मुक्त जन पाया जन वरण दूत राम गया ईश मुनि सरदा सा पूरी राव रह साध संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाई नैन भक्ति नाम समाय सुख बसरा जी का न पान सुख बसरा जी किया जान सुख बसरा जिन सब कह दिया सुख बसरा जी जीवन जिया शोक बिसरा जी अगन महाराख है गुरु प्रसाद को बेला राख है शोक बिसरा जी विकति काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुर पूरा ताति है वो जाया प्रभु अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ये हुका मान त्याग जप हर नाम सिमर सिमर सिमर सिख पाव आप जप आप रह नाम जपाव भगत पाई तरिया संसार बिन भक्ति तन हो सी सैर सर्व कल्याण सुख नित नाम गुरु जात पाए विश्राम सब दुख का बतना सुनैनक नाम जप कुंता सब्जी प्रीत प्रेम राह का मान तना त्रिहि स्वाव नियत्रम पीह दरस सुहय मन बिगसाय साध चरण दो पद जन का मान तन रंग बिरला को पावा संगी को बह दी जय कर माया गुरु प्रसाद नाम जप लया आपकी उपमा कहीं न जाय नानक रह सर्व समाई प्रापक संत दयाद भगत वचन सदा कृपाद अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कर प्रतपाल

तब सब सकत कहो जत ठाई। जब आप है आप अपने जो उतार है तब कौन निडर है, कौन कर डर है, अपन चल दाव करने वार। नानक ठाकुर कुरक महापार, अपना सुख अपना सुन तह जन वर्ण।

युक्त जाग सवहात अंतर्बाह जान सात गुण दान व्यंत अपान अनुदा सदबलहार पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर हो कृपा अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे उभया प्रत पाले जिन वह पात जो जो रचो सोत सहित यात जह पावत हरे मलाई भगत करे हर के गुण गाय मन अंतर विश्वास कर मान्या करना नानक के जाने जन लागो हरि कह नाय तुस न वृत्ति जाए सेवक सेवा वा नाय हुकुम बूझ परम पात पाए हित ऊपर नहीं विचार जाग मन बस निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर आन तेन पूजा गुरु के पैरी लोग सुखी है पर लोग सुखी ते नानक हर प्रभ आप है मेरे साथ संग मिल गा साध संग मिल करो आनंद गुण गाव प्र परमानंद राम नाम तात कर विचार दो लाभ देह का कर उदार अमृत बचन हर के गुण गाय उपरा तन कह सवाय वाट पैर प्रभि कम निरा मिटा ज्ञान गुण सहन देरा सनपति हर तब साब मन इच्छे नानक कर पाव भारत पाल तो देखो सवार राम नाम अंतर वरतार पूरे गुरु की पूरी दीखिया जिस मन बसा तो साज प्रीखिया मान का नाम जप हले बुलाई दुख दर्द मन तु पाओ जाय सच वा पार कर हुआ पार दरगन बह के तुम्हारी एक टीक रख मन वाही नानक बहर न आव है जाहे दिखते दूर कह को जाय उबरा रख नार दियाय निर पाओ जप सकल पाओ मेटा प्राप कृपा तु प्राणी छोटा जब प्रभु राख देना दुख नाम जपत मन अवत सुख चिंता जाय मिट अहंकार तिस जान का कुए न पहुचनार सिर ऊपर ठाठा गुर सूरा नानक तक गार्ज पूरा मात पूरी अमृत जा के दृष्ट दर्शन पी

उत्पाद अमृपय अमर पद पाया साध संगनान कर दिया सरोक ज्ञान अंजन कर दिया ज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा दे संत भेटिया नानक मन प्रकाश अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सागर समिग्री एक स्कट माहिं करन नाना दृष्टा ही नाव निध अमृत भव का नाम दे ही मैं इसका विश्राम सोन संवाद अनहत कहनाद कहन जाय अचर जो संवाद दिखाय खाव दिखाय नानक तो जन सोजी पाय स्वंतर सुबह अनंत कट कट व्याव रहे अपगवंत

गृह समाहि यदि बेना नहीं कोठा गुरु प्रसादान कृपा वेद प्राण समर्थमा देव शशि अर सूर न किया तरम एक बाण प्रभु सब को बोला अब अडोल न कब हडोला सर्व कराकार केला केला मूल न पाया गुण है अमूर सर जोत में जाकी जोत तार रहु स्वामी उद्भूत गुरु प्रसाद परम का नह नान दिन में हु सास संत जन का भी खंसा ब्रह्म संत जन के हृदय अवतरम संत जन सुन सौ वचन।

सहज तर सब सहज भूत भूत अपन हराज ताकि आत्मित कृष्ण जाए दूसर न सोजी पाए दूसर किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान भी हो जान जो जान ते सदा सुख हुए।

त्राया जान आवन कह स्वाऊ जन का संग जत आवन आऊँ आऊँ मुकुत मुकुत कर संसार नानक दिख जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभा राधया पूरा जा का नाऊँ नानक पूरा पाया पूरे के गुण का वस्पति पूरे

गुरुपुरी नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद सत्संग पर परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोविंद अमृत रह पियो। चेत चतुह नारायण जी के एक रूप जाक रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपा।

मुल्कराज है नरोग स्वरूप है तरमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा सुजुग सदा है सदा स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तो सलाम है।

गंजी गादी सुभंग सर्व भाग सर्वानुराग है त्रिभुत स्वरूप है सिद्ध है सूदा के नरकों प्रनाश है पृथ्वी और प्रवास है निरुक्त प्रवाह सदा सदा है भगवंत स्वरूप है पर ज्योत अनूप है निरुक्त सदा है भगवंत प्रवाह है अनूप स्वरूप है पर ज्योत अनूप है चाकरी छंद भंग है नांग है भेख है लेख है भर्म है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है भे है भूत है धूत है नाश है दास है धंध है बंध है अपंग

0: पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सत है भी सच नानक होसी
1: सच
0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी
1: सच

0: अजुनी से पंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी
1: सच
0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत